0: हजुरको रेडियो 102.1 MHz।
1: लो आयो है क्वालिटी मा नम्बर 1, दाममा सबैभन्दा कम।
2: ओ प्रकाश कपूर।

रंजवीर पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।

0: सुनिए, इन्हें जानते हैं? फादर पीटर दयाल।
1: वो रहे सामने।
2: माई नेम इज पीटर दयाल। आई डिक्लेयर दैट मिस्टर हैरी प्रसाद इज एन इनोसेंट मैन।
3: वेल डन आरव, हमारे इस कन्फेशन वीडियो की हेल्प से ही इजीली पुट स्टे ऑन अ सेंटेंस।
4: वो बहुत जल्द जेल से बाहर होगा। यू बी अ फ्री मैन सून आरव।
3: सेनेटर मी राइट अवे।
0: जी।
5: द एंटायर विलेज वुड बेयर विटनेस टू दिस।
6: आरव, सेंड इट अप।

0: आई जस्ट डोंट गेट यू आर जो तुमने आज किया है उसकी वजह से हरी आजाद होगा और वसुधा तुमसे अलग होगी, फिर भी तुम इतने खुश हो।
1: सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता पूर्वा। मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत में कर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। हमें मिलना है, हम देखो एक ना एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे। अपूर्वा गाड़ी रोक।
0: क्या हुआ?
1: स्टॉप द कार प्लीज।
0: व्हाट हैपेंड?
1: खुशबू,